0: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om. There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

नारायणम् ओम नमः श्री प्रभुदीपाय श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। भजन।

0: श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय, श्री शलपुर जी महाराज की जय, हिंदू धाम समृत सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय।
1: जय,
2: वेरी गुड, थैंक यू, हरिओम एवरीबॉडी। Today is finished.

श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धर्म सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्री अलक पुरुष महादेवा की जय।

Om Bole Sili Bhagavan Dev Purushamadeva Ki Jai. Jaga Musafir Dekhavo Kala Ki Motaraya Rahe. Jaga Musafir Dekhavo Kala Ki Motaraya Rahe. Kis Malik Ka Nokar Tha Aur Kis Kichan Me Aaya Fasa. किस मालिक का नौकर था और किस कीचड़ में आया फंसा क्या जवाब आगे देवेगा नैना नींदा समाया रखे क्या जवाब आगे देवेगा नैना नींदा समाया रखे जाग मुसाफिर देखा वो काला की मोटाराया रखे जाग मुसाफिर देखा वो काला की मोटाराया रखे जो कुछ करना है सो कर ले नहीं तो फिर पिछतावेगा जो कुछ करना है सो कर ले नहीं तो फिर पिछतावेगा मालिक को क्या क्या जवाब देगा पला पला बे

0: बोल श्री भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्रीमान गिला जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय। अलक पुरुष भगवान की जय। धर्म समर्थ समानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: हम बोले श्री दीप नारायण भगवान।

0: बड़े श्री नरम भगवान की जय, श्री मंगला जी महाराज की जय।
1: ओम बोले श्री भगवान देव महादेवा की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय। गुरुदेव शरण तुम्हारे, गुरुदेव

भले सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धीप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।

0: ॐ श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री मंगिया जी महाराज की जय। श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: Something?

अम्बले श्रीदीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

श्रीदी नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, सब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

नमः। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का

लाभ लेने आए हैं। घर भी बैठ सकते थे, लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें। तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सब का जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आ कर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में भूरा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, ये नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा कर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज, वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ मैं, अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली। कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परमपिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएँ की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमको समझने की कमी है, ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है? क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में, भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराए।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते हैं। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान। आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय हो।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
1: 11 egyszer Om lesz.
0: There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

अलख पुरुष जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन दार, ओम शांति शांति, शांति।

0: अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, बोधानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद जी महाराज की और सभी महापुरुषों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट इज ग्रेट opportunities for us to be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that

अपने आहार को सुधारना है। यदि आहार सुधर गया तो हमारे मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क और पूरा वातावरण सुधर जाएगा। तब आप लोग कह सकते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतरित होता हूँ। वो ईश्वर आप में ही अवतरित होगा, अपने आप को स्वयं को बनाएंगे तो अवश्य ही इस पूरे संसार में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर पाएंगे। तो बच्चों, विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो जगो और चलो अपने मार्ग पर। आपका कौन सा मार्ग है जो आपके प्रारब्ध ने आपको निश्चित करके संसार में भेजा है। इतना कह करके एक साथ एक भगवान की धुनी करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, दीप निरंजन सब दुख भंजन, दीप निरंजन।

0: प्रभु सिदीप निरंजन सब तुक भंजन। आज इतना ही, धन्यवाद। आपने हमको सुना और आचार्यों के सभी चरणों में श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ऐसे कार्यक्रमों में बार बार पधारते रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की, होली गुरु जी माधवानंद जी गुरुदेव की, देव पुरुषा महादेव की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी गुरुदेव की, आज के आनंद के।
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुदेव नमः। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज स्वामी जी ने आपको सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने अभी आपकी सबकी फ़ोटो स्वामी जी को भेजी है, तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी, और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबको। ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का 8वां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी सेकंड एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है, और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
2: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हुआ, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती है, क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandalesharam Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayana, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. he speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad, he's traveling very often, and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami, Chetan Giriji Maharaj from Sojat. He's connected with us for the last 40 years. So I'm welcoming both of them to our ashram. Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji doesn't need any introduction. He is part of our family. Acharya Rajendra Puriji is also here. And we have also on one side, we have Kapilji Agarwal from Jaipur, a big businessman. And our Mother Prasad Sharma, who taught many of us Bhagavad Gita and many other shlokas. So I welcome him also. We have here Chandanji, Chaganji, all the Nepal Rani, all our friends are now on the stage. So this is the opportunity to remember that Swamiji did a miracle. He managed to create a big ashram, such amazing structure that we can even call it the eighth wonder of the world. I was just now in Bikaner and I saw that even the king took a lot of time to make some temple. But Swamiji managed to overcome so many problems, so many things, and he managed to give to the world, to the India, this amazing Om Ashram, Dvadash Jyotirling, and all us together united under one roof. तो बाप जी ने जो यहाँ काम किया था एक चमत्कारी बात है चाहे 25 साल 30 साल लग गया लेकिन संपूर्ण हो गया जो आप सुन रहे थे एक जुबा है एक चमत्कार है ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे बड़ा मंदिर बनाना इससे डबल गुना बड़ा है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्कूल से पधारे स्कूल हमारे निदेशक साहब को और सारे टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी इतनी शांति से बैठे मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस शब्दों के साथ जय श्री राम

जी महाराज, मनसासीन विराजित संस्था के सभी शुभचिंतक एवं भक्तगण, गुरुजन, बालक बालिकाएं, सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद एवं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है। शास्त्र में अनंत हरि कथाएं कहे सुने बहुविधि सब संताएं, मुझे पूर्व हमारे गुरुजनों ने या विद्वानों ने जो आपको व्याख्यान दिया, आशीर्वाद दिया, उद्बोधन दिया, मेरा यही निवेदन है कि इसको हृदयंगम करके, आत्मसात करके अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएं। और विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज ने जो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, योग, वेदांत, पर्यावरण, विश्व शांति, मानव मात्र के कल्याण हेतु जो कार्य किए हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलें, इतना कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। विशेष करके हमारे आत्मप्रिय या आश्रम के सब शुभचिंतक, ये सभी स्वामी जी महाराज निवेदन करना चाहूँगा कि स्वामी पूज्य गुरुदेव के ये हमारे परंपरा के सभी शुभचिंतक हैं। और कार्यक्रम रात्रि को ही मुझे जानकारी मिली, कार्यकर्ताओं की व्यस्तता थी, इधर इधर सारे व्यस्त थे और उनका कहना था कि कार्यक्रम जो है शीघ्र करना है, ये विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो रात्रि को भूमिका बना करके आप सभी को हमने शायद जल्दी जल्दी फ़ोन से निवेदन किया होगा, ना समाचार हुआ, ना पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी को संदेश मिला है, लेकिन आप कुछ ही जो है सूक्ष्म समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आप सभी पधारे, उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक अभिनंदन। बड़ा अभी चिंता का विषय है कि विश्व गुरु जी इस जो है कार्यक्रम के बीच में उपस्थित नहीं है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर फिर भी भगवान के लिए, गुरुओं के लिए और समाज के लिए ये चोला पहना है तो आपके बीच खड़ा हूँ। और साथ ही साथ में गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दूरभाष के माध्यम से कि उनका संवाद हो पाएगा या नहीं, ये नहीं कह सकता, लेकिन आशीर्वाद जरूर आपको जो है दूरभाष के या जो है मोबाइल के माध्यम से हो जाएँ, ये कोशिश करता हूँ। दो मिनट में आपसे पुनः बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और हरिओम। दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद पुरी जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।

0: गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो, ये वेदों का सार है, ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो सागर से सहज तार लेते हैं।
1: The following day, there was the festival of the Dawn of Consciousness, the Light of Consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tam so ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश।

0: श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, वी नीड टू प्रोटेक्ट द सनातन धर्म एंड वी शुड एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स। नो रिलीजन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो एनी कल्चर शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो एनी कंट्री शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम एज दे आर।
1: Finally, the day of ceremonial bathing has

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.